ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापानी वजीर खारजा मोतेगी तोशिमित्सु ने इस जरूरत पर जोर दिया है कि पूरी आलमी बरादरी आपनाए हुर्मुज के मुस्तकबिल पर बात करे। उन्होंने न्यूयॉर्क में वज़राए खारजा के एक इजलास में महफूज और मुस्तहकम बहरी दायरा कार के हुसूल के लिए बहरी तआवुन को तकवियत देना के मौजू पर बात की। जापान, फिलिपाइन और दीगर के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस इजलास में 53 ममालिक और तंजीमों ने शिरकत की। मोतेगी ने मशरिक़ वुस्ता की सूरतहाल पर तबसरा करते हुए आपनाए हुर्मुज के जरिए आज़ादाना और महफूज जहाजरानी की बहाली की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस कलीदी आबी गुजरगाह पर मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि आपनाए पर मौजूद ममालिक और इसे तरसील के लिए इस्तेमाल करने वालों समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी इनमें शामिल हो। उन्होंने बकौल उनके बुहरे मशरिकी चीन और बुहरे जनूबी चीन में बज़ोर ताकत या जबर मौजूदा हैसियत को तब्दील करने की मुसलसल और शिद्दत पकड़ती यकतरफा कोशिशों के बारे में चीन की मुखालफत का भी इरादा किया। मोतेगी बज़ाहिर चीन को जहन में रखते हुए ये तबसरा कर रहे थे। उन्होंने बुहरे जनूबी चीन में चीन के इलाकाई दावों को मुस्तरद करने वाले बैनुल अक़वामी सालिसी ट्रिब्यूनल के 2016 के फैसले पर अमल पैरा ममालिक की अहमियत को उजागर किया। कंबोडिया की हुकूमत ने मीडिया को धोखा दही के अड्डे और तफ्तीशकारों की जानिब से वहां से जब्त की गई अशिया दिखाई हैं। एक अड्डा जो वियतनाम के साथ सरहद के करीब है, तकरीबन 1.2 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है। ये एक ऐसे मुकम्मल कस्बे की मानिंद दिखाई देता है जिसमें रेस्तरां तक मौजूद हैं। अड्डे के अंदर मेजों पर कंप्यूटर मॉनिटर रखे थे। एक हिस्से पर सिंगापुर पुलिस का लेबल लगा था। कंबोडियन हुकाम ने कहा कि बावर किया जाता है कि एक जराइम पेशा ग्रोह ने इस पुलिस फोर्स का रूप धार कर धोखा दही अंजाम दी है। मकामी हुकाम और दीगर ओहदेदारों का कहना है कि यह अड्डा कंबोडियन कारपोरेट ग्रुप प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के तहत चलाया जा रहा था, जो एशिया की सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी जराइम पेशा तंजीमों में से एक के तौर पर अमरीकी हुकाम की जानिब से पाबंदियों की जद में है। उनका कहना है कि चीनी, वियतनामी और भारतीय शहरियों समेत 20,000 तक गैर मुल्की वहां मुकीम थे। दरियासना मुल्क में फ्राड के अड्डों से जब्त किए गए स्मार्टफोन और कंप्यूटरों समेत शवाहिद की कई अशिया दारुलहुकूमत फिनामपेन के एक पुलिस स्टेशन में नुमाइश के लिए रखी गईं। इनमें जापानी पुलिस की जाली वर्दियां और नोटबुक शामिल थीं, साथ ही जापानी जबान में लिखे गए नोट्स जिनमें उन जापानी लोगों के नाम, पते और दीगर मालूमात शामिल थीं जिनके बारे में बावर किया जाता है कि उन्हें जराइम पेशा ग्रोहों ने निशाना बनाया था। पुलिस को ऐसा AI सॉफ्टवेयर भी मिला जो चेहरे की तस्वीर को तब्दील कर सकता है। इससे ये जाहिर होता है कि धोखा दही के तरीके कितने पेचीदा हो चुके हैं। जापानी येन का बुध के रोज न्यूयॉर्क में अमरीकी डॉलर के मुकाबले में 158 की निचली सतह पर लेन देन हुआ। ये 3 हफ्तों में कमजोर तरीन है। जुमेरात को टोक्यो में येन के भाव इसी सतह के इर्द गिर्द चल रहे हैं। अमरीकी कारोबारी सरगर्मी इंडेक्स के आदाद और शुमार तवक्को से कई ज्यादा मजबूत आने के बाद येन को फरोख के दबाव का सामना करना पड़ा। इसने इन तवक्कोआत को बढ़ाया कि फेडरल रिजर्व मईशत मजबूत होने के बायस इस साल दोबारा शरह सूद बढ़ा सकता है। इसके नतीजे में इन उम्मीदों पर ऊस पड़ गई है कि अमरीका और जापान के दरमियान शरह सूद का फर्क जल्द ही खत्म हो जाएगा। मंडी जराय का कहना है कि येन की गिरावट ने जापानी हुकूमत और बैंक ऑफ जापान की जानिब से मार्किट मुदाखलत के बारे में खदशात को दोबारा ताजा कर दिया है। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। चीनी सदर शी जिनपिंग अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं। मई में ट्रंप के बीजिंग के दौरे के बाद यह रवां साल में उनकी सदर ट्रंप से दूसरी सरबराह मुलाकात होगी। और अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि अमरीका और चीन ने अपनी तिजारती जंगबंदी में 2 माह की तोसी पर इत्तेफाक किया है, जो 10 नवंबर को खत्म होने वाली थी।
اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 24 सितंबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका की राजकीय यात्रा पर हैं। वे इस साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दूसरी बार मिलेंगे। इससे पहले ट्रंप ने मई में पेचिंग यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात की थी। शी बुधवार को वॉशिंगटन के निकट एक सैन्य अड्डे पर पहुंचे, जहां ट्रंप ने उनका स्वागत किया, जिसे एक असामान्य कदम बताया जा रहा है। 2023 के बाद शी की यह पहली अमेरिका यात्रा है, जब उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। बृहस्पतिवार को व्हाइट हाउस में स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसके बाद शिखर बैठक और राजकीय भोज होगा। बैठक में आर्थिक और कारोबारी मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी जा सकती है। दोनों नेता ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। चीन इस बिक्री का कड़ा विरोध करता है। ईरान में जारी संघर्ष चर्चा का एक और मुद्दा होगा। अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच एआई को लेकर खींचतान जारी है। चर्चा का एक मुख्य बिंदु एआई संबंधी सुरक्षा होगा, जबकि दूसरा बिंदु एक संवाद व्यवस्था तैयार करना होगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का कहना है कि अमेरिका और चीन ने अपने कारोबारी संघर्ष विराम की अवधि को 2 महीने के लिए और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। ये अवधि 10 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। बेसेंट ने बताया कि रविवार और बुधवार को चीन के उप प्रधानमंत्री हो लिफोंग के साथ हुई उनकी बातचीत के परिणाम स्वरूप ये सहमति बनी। उन्होंने फॉक्स न्यूज के एक कार्यक्रम में कहा कि इसे 10 जनवरी तक बढ़ाया जा रहा है, ताकि हमें आर्थिक मोर्चे पर और अधिक कदम उठाने का समय मिल सके। ये घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बृहस्पतिवार को होने वाली शिखर बैठक से एक दिन पहले की गई। दोनों देश एक दूसरे पर जवाबी शुल्क लगाते हुए बढ़ते कारोबारी तनाव में उलझे हुए थे, जिसके बाद अक्टूबर 2025 में एक शिखर बैठक में कारोबारी संघर्ष विराम हुआ। इसके तहत अमेरिका ने चीन से आयात पर अतिरिक्त शुल्क कम करने पर सहमति जताई और पेचिंग दुर्लभ धातुओं के निर्यात पर कड़े प्रतिबंधों को 1 वर्ष के लिए स्थगित करने पर राजी हुआ। इसके अलावा अमेरिका ने चिप निर्यात प्रतिबंधों के अधीन कंपनियों की विस्तारित सूची को भी इस अवधि के लिए टाल दिया।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशीमित्सु ने होर्मुज जलडमरू मध्य के भविष्य पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से चर्चा किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। सुरक्षित व स्थिर जल क्षेत्र की दिशा में समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने के विषय पर न्यूयॉर्क में हुई एक बैठक में मोतेगी ने ये बात कही। जापान, फिलीपींस और अन्य देशों ने ये बैठक आयोजित की जिसमें 53 राष्ट्रों और संगठनों ने भाग लिया। मोतेगी ने पश्चिम एशिया के हालातों पर टिप्पणी करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध व सुरक्षित नौवहन बहाल करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर होने वाली चर्चाओं में जलडमरू मध्य स्थित देशों और माल ढुलाई के लिए इसका उपयोग करने वाले देशों सहित संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शामिल करना आवश्यक है। उन्होंने पूर्वी और दक्षिण चीन सागरों में यथास्थिति को बल या दबाव पूर्वक बदलने के लिए लगातार किए जा रहे एक तरफा गंभीर प्रयासों के प्रति जापान का विरोध भी दोहराया। ऐसा लगता है कि मोतेगी ने चीन को ध्यान में रखते हुए ये टिप्पणी की। मोतेगी ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के 2016 के फैसले का पालन करने के महत्व पर जोर दिया। इस फैसले में दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावे खारिज किए गए थे। कंबोडिया सरकार ने स्कैम सेंटरों और जांचकर्ताओं द्वारा जब्त की गई वस्तुओं को मीडिया को दिखाया है। वियतनाम की सीमा के पास स्थित एक स्कैम सेंटर लगभग 1.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये एक नगर जैसा दिखता है जिसमें रेस्तरां आदि भी मौजूद हैं। स्कैम सेंटर के परिसर में टेबलों पर कंप्यूटर मॉनिटर रखे हुए थे। एक भाग को सिंगापुर पुलिस के रूप में चिन्हित किया गया था। कंबोडियाई अधिकारियों ने कहा कि माना जाता है कि एक आपराधिक गुट ने सिंगापुर पुलिस के भेस में धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। स्थानीय अधिकारियों और अन्य का कहना है कि ये अड्डा कंबोडियाई कंपनियों के समूह प्रिंस होल्डिंग ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता था, जिस पर अमरीकी अधिकारियों द्वारा एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों में से एक होने के कारण प्रतिबंध लागू हैं। उनका कहना है कि उक्त स्कैम सेंटर में चीनी, वियतनामी और भारतीय नागरिकों सहित लगभग 20,000 विदेशी नागरिक मौजूद थे। इसी बीच देश में स्कैम सेंटरों से जब्त किए गए स्मार्टफोन और कंप्यूटरों सहित कई सबूतों को राजधानी नोमपेन के एक पुलिस स्टेशन में प्रदर्शित किया गया। इनमें नकली जापानी पुलिस वर्दी और कॉपियों के साथ साथ जापानी भाषा में लिखे गए संदेश भी शामिल थे, जिनमें उन जापानी लोगों के नाम, पते और अन्य जानकारी थी जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें स्कैमरों द्वारा निशाना बनाया गया था। पुलिस को ऐसा एआई सॉफ्टवेयर भी मिला है जो चेहरे की फोटो को बदल सकता है, जिससे पता चलता है कि धोखाधड़ी के तरीके कितने उन्नत हो गए हैं। बुधवार को न्यूयॉर्क में जापानी मुद्रा येन ने गोता लगाया और वो अमरीकी डॉलर के मुकाबले 158 के निचले स्तर पर पहुंच गई। ये पिछले 3 हफ्तों में येन का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। बृहस्पतिवार को टोक्यो में भी येन का मूल्य लगभग इतना ही रहा। अमरीकी कारोबारी गतिविधि सूचकांक के आंकड़े उम्मीद से कहीं अधिक मजबूत आने के बाद येन पर बिकवाली का दबाव बना। इससे ये उम्मीद बढ़ गई है कि अर्थव्यवस्था में मजबूती आने के साथ ही फेडरल रिजर्व बैंक इस साल फिर से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अमेरिका और जापान के बीच ब्याज दरों के अंतर में जल्द ही कमी आने की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। बाजार सूत्रों के मुताबिक येन की गिरावट से ये चिंता फिर पैदा हो गई है कि जापान सरकार और बैंक ऑफ जापान बाजार में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।